आंखें दिल का आईना है, ये कहावत तुर्किया में बकसरत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या वाकई इंसान की आंखों में जानकर इसके जहन एहसास और जज्बात को समझना मुमकिन है? ये दावा किया जाता है कि माजी में ऐसे लोग भी थे जो इस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। 12वीं सदी में चीन में इंसाफ करने वाले जज ने कदीम तरीके से बनाए गए धूप के चश्मे को इत्तफाक के तौर पर दरियाफ्त किया और इस्तेमाल किया। चश्मों को मौजूदा खूबसूरती टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। अगरचे चश्मों की तारीख कदीम जमाने तक फैली हुई है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि

0: जा सकेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीकी वजारत खजाना की तरफ से आज़ाद किया गया कोई भी मुंजमद असासा या रकूम वाशिंगटन के सर कंट्रोल अमानत अकाउंट्स में रखे जाएंगे। खसूसी तौर पर अमरीका से खुराक तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए बरकार लाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, इस इंतजाम से अमरीकी किसानों को भी फायदा पहुंचेगा क्योंकि मकई, गंदम, सोयाबीन की बरामदात में इजाफा होगा जिनकी ईरान दरपेश इंसानी बुरान के दौरान अश जरूरत है। ट्रंप ने मुस्कुरा बयाना वजारत खजाना को वाशिंगटन तेहरान के दरमियान एक कागजी 60 रोजा लाइसेंस इजरा करने के बाद दिए। 60 रोजा लाइसेंस वाशिंगटन तेहरान के दरमियान कशीदगी में गिरावट के जेर मकसद तैयार करता नए जौहरी फ्रेमवर्क के तहत ईरानी तेल की फरोख की इजाजत देता है। हुकूमत का मौकफ है कि पाबंदियों में किसी भी नरमी के लिए उठाया जाने वाला हर कदम नहायत मुनज़्ज़म होगा और महसूस शरायत से मशरूर रखा जाएगा। असासों को आज़ाद करते हुए इंसानी हमदर्दी की ज़रूरियात को अवलिन तरजीह दी जाएगी।
1: अमरीकी सैनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक मुश्तरक करारदाद के हक में 50 के मुकाबले में 48 से वोट दिया है, जिसके तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत की गई है कि वह ईरान के खिलाफ उस वक्त तक फौजी कार्रवाइयाँ बंद रखें जब तक कांग्रेस मजीद फौजी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देती। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद इस इकदाम को 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के सेक्शन 5C के तहत मंजूर किया गया था। लुइजियाना से रिपब्लिकन सैनिटर बिल कसीडी, माइन से सूजन कॉलिंस, अलास्का से लीजा मरकोवस्की और कैंटकी से रैंड पॉल ने इस करारदाद की हिमायत में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फिटरमैन ने इसके खिलाफ वोट दिया, जबकि कैंटकी से रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैककॉनल और पेंसिल्वेनिया से डेविड मैककॉर्मिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस इकदाम के अमली असरात अब भी गैर यकीनी हैं क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान पहले ही एक अबूरी माहदे पर पहुँच चुके हैं।
0: रूसी वजारत दफा ने कहा, दोनों जंग हमलों में शिदत आई है तो इसके दिफाई निजाम ने रात भर 323 यूक्रेनी ड्रोन गिराए हैं। इराक के गवर्नर ने रूस के ओरियमबर्ग इलाके में संती तनसीब को निशाना बनाने ड्रोन मार गिराए पर नुकसान जान नुकसान के बारे में मजीद तफसील नहीं बताई। यह हमला रूसी इलाके के काफी अंदर तक यूक्रेनी हमलों की एक कड़ी मिसाल में शामिल है जिनके बारे में कीफ का कहना है मास्को की जंगी कार्रवाई की फंडिंग करने वाली तनसीबात तेल के गोदामों और रिफाइनरीज को हदफ बनाते हैं। रूस की तरफ से तैनात गवर्नर मिहाइल राजो जाइशिफ ने टेलीग्राम पर कहा कि जब यूक्रेनी ड्रोन ने सेवास्तोपोल जो रूसी इलाकशुदा क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर की बिजली तनसीबा को निशाना बनाया तो बिजली की तरसील मुनकता हो गई। राजो जाइफ ने राशन से कहा, कमजोर पड़ोसियों का ख्याल रखें, फोन का इस्तेमाल हंगामी राबतों तक महदूद करें। क्रीमिया जिसे 2014 में रूस ने इलाहा कर ली थी अपनी लॉजिस्टिक अहमियत की वजह से रूसी अफवाज के लिए बाकायदगी से यूक्रेनी मिसाइल ड्रोन हमलों का हदफ बनता रहता है। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इतालवी वजीर आजम जॉर्ज मेलोनी ने कहा है कि वह फ्रांस में पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ सेवन के इजलास के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाजिया तबसरों ने उन्हें वाकई में चौंका दिया था, मगर इस वाकये से रोम की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आंसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेलोनी ने उन रिपोर्ट्स का जवाब दिया जिनमें ट्रंप के इस दावे का हवाला था कि उन्होंने इजलास के दौरान ट्रंप के साथ तस्वीर उतरवाने के लिए मिन्नत समाजत की थी। मेलोनी ने पहले ही इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मेलोनी ने कहा कि मैं वाकई सच्चे दिल से चौंक गई थी, ये मेरा मुखलिसाना रद्द अमल था। मेलोनी ने यह भी कहा कि उन्होंने वाकये के बारे में रिपोर्ट्स और ऑनलाइन बहस व मुबाहसे बशमूल वायरल वीडियोस को पढ़ा और देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें मुबैना तौर पर वायरल होने वाली वीडियोज़ भी शामिल थी जिनमें मेरा मौक़िफ़ बसा औक़ात जारहाना महसूस हो सकता था, इसके बजाय इन रिपोर्ट्स के जो मुबैना तौर पर इसे ईरान के साथ मुज़ाकरात की पेशरफ से तवज्जो हटाने, नेटो के अंदर मुश्किलात पर तवज्जो मरकूज़ करने के तौर पर बयान करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस बहस को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती। तनाज़े के बावजूद मेलोनी ने जोर दिया कि इटली की खारजा पॉलिसी बिला तब्दीली कायम रहेगी।
0: सरकारी मीडिया के CNA के मुताबिक शुमाली कोरिया को अगले 5 वर्षों में 8 साल अपने 5,000 मेट्रिक टन के चोय ह्यून जहाज जितने बड़े 2 जंगी जहाज बनाने चाहिए। ये बात वहां के रहनुमा किम जोंग उन ने एक तबाहकुन बहरी जहाज की कमिशनिंग तकरीब में कही कि CNA ने मंगल के रोज रिपोर्ट किया कि किम ने नए कसल मकासद तबाहकुन बहरी जहाज चोहयून की तैनाती का जश्न मनाने के लिए शुमाली कोरिया की नामपो बंदरगाह पर मुनकदा एक तकरीब में शिरकत की। KCNA ने मजीद बताया कि इस तबाहकुन बहरी जहाज ने गुज़िश्ता 24 महीनों के दौरान अपने फौजी ऑपरेशनल टेस्ट

सामिन, इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद दर्द से नहीं होती बल्कि उस बात से होती है कि दुनिया उस दर्द पर अपनी आंखें बंद करके खामोश हो जाए और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दे। लेकिन कभी कभी ऐसा लम्हा भी आता है जब गज़ा से आसमां की तरफ उठने वाला धुआं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे किसी इंसान के दिलो दिमाग को झंझोड़ देता है। मशरिक़ वुस्ता के एक कोने से बुलंद होने वाली वो फरियाद दुनिया के उन शहरों के चौराहों पर एक चीख बन जाती है जिनका आपने तस्वुर भी नहीं किया होता। ख़ास तौर पर साल 2023 के बाद मसला फ़लस्तीन ने एक ऐसी अजीम और आलमी लहर पैदा की जो हमने तवील अरसे से नहीं देखी थी। दुनिया भर में दसियों हज़ार मुजाहरे हुए और लाखों लोग एक ही वक्त में सड़कों पर निकल आए।